गुड मॉर्निंग, नमस्कार. सुपर सुपर बात छत्रपती संभाजी नगर. तुम्ही ट्यून केलेलं आहे MGM 90.8 FM आणि एक्झॅक्टली आता 7:12 वेळ झालेली आहे, म्हणजे तुमची आजची ही मॉर्निंग गुड करायची वेळ झालेली आहे. गुरुवार का दिन है, पूरा अभी वीक सर्वाइव करना पड़ता है और मिडल ऑफ द वीक होता है ये गुरुवार. और भाई आज का मोटिवेशन, क्या ही जरूरत है मोटिवेशन की यार, हर दिन क्या ही मोटिवेट करूँ आपको. आप अपने आप में खुद मोटिवेट हो तो किसी और की मोटिवेशन की क्या ही जरूरत है आपको. तो हर दिन क्या विचार सुनाना यार, इससे बेटर है खुद को विचार करना, खुद से विचार करना और खुद में कुछ तब्दीली लाना. अपने आप फिर वो

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: पहली सैलरी, सैलरी कितनी थी शायद कुछ साल के बाद याद भी ना रहे, लेकिन उस सैलरी का एहसास जो जिंदगी भर याद रहता है। एक लड़का था, नौकरी शुरू हुए बस एक महीना हुआ था। पूरे महीने उसने टाइम पर ऑफिस जाना, बॉस की डांट सुनना, बस की भीड़ झेलना, सब कुछ किया। फिर एक दिन मोबाइल पर मैसेज आया, सैलरी क्रेडिटेड। उसने तुरंत अकाउंट चेक किया, रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसके पास आ गई हो। उस दिन ऑफिस से निकलते वक्त उसके कदम हल्के थे, चेहरे पर मुस्कान थी। दोस्तों ने कहा चल पार्टी दे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सीधे मार्केट गया, बहुत देर तक एक दुकान के बाहर खड़ा रहा, फिर अंदर जाकर एक साड़ी खरीदी माँ के लिए और पापा के लिए एक शर्ट। घर पहुंचा तो माँ ने पूछा आज इतना खुश क्यों है, क्या हुआ बेटा? उसने मुस्कुराकर बैग आगे कर दिया। माँ ने साड़ी देखी और कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाई। पापा ने शर्ट हाथ में ली और बस इतना कहा पैसे क्यों खर्च कर दिए बेटे? लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी ये बता रही थी कि उन्हें कितना अच्छा लगा है। उस रात पहली बार उस लड़के को समझ आया, पहली सैलरी की खुशी अपने लिए कुछ खरीदने में नहीं होती, खुशी तो तब होती है जब जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे जरूरतों पर खर्च कर दी, हम उनकी खुशियों पर ही अपना पहला खर्च करते हैं। और शायद इसीलिए पहली सैलरी की रकम नहीं याद रहती, लेकिन उसका पहला खर्च हमेशा दिल में दर्ज हो जाता है।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

Let's talk about healthy life. Good morning, Chhatrapati Sambhaji Nagar. You are listening MGM 90.8 FM. बंदे का नाम है अदनान और हेल्दी लाइफ हम सभी को जीना है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल भी रखना है। आज एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो कि हम में से बहुतों की मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बन चुकी है, सुबह उठते खाली पेट चाय पीना। पीते हो ना आप? आई नो दैट। बहुत सारे लोग ना तो भाई चाय के बिना आँख ही नहीं खुलती यार, लेकिन सवाल यह है कि क्या खाली पेट चाय पीना सच में सही बात है? सवाल बहुत बड़ा है ना, जब हम सुबह बिना कुछ खाए चाय पीते हैं। चाय में मौजूद कैफीन से ना तो एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, इसी वजह से कुछ लोगों को एसिडिटी, पेट में जलन, गैस से बेचैनी महसूस हो सकती है। अगर आपको लगता है कि चाय ही तो ब्रेकफास्ट है, तो जरा संभल जाइएगा, क्योंकि चाय थोड़ी देर के लिए पेट भरा हुआ फील करवा सकती है, लेकिन बॉडी को जरूरी न्यूट्रिशन नहीं देती। इससे ना तो एनर्जी थोड़ी जल्दी डाउन हो सकती है और थकान भी महसूस हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चाय को दुश्मन कहना है। अगर ऐसा किसी ने कहा तो देख लो, चाय बिल्कुल भी दुश्मन नहीं है भाई, चाय तो सुकून है। बस एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि चाय से पहले कुछ हल्का सा खा लेना बेहतर हो सकता है, जैसे बिस्किट, ड्राई फ्रूट, फ्रूट या हल्का ब्रेकफास्ट। तो याद रखिएगा, चाय हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन चाय सुबह उठते ही तुरंत मत पीजिएगा। उसके पहले थोड़ा नाश्ता कीजिए, थोड़ा कुछ खाइए, उसके बाद चाय पीजिएगा, तब देखिएगा चाय दुश्मन नहीं दोस्त बन जाएगी। क्योंकि दिन की शुरुआत सिर्फ चाय से नहीं, सेहत से भी होनी चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे अदनान, और याद रखिए, चाय का मजा तभी है जब पेट भी खुश हो और सेहत भी खुश हो, समझे? और भी ऐसी टिप्स हम हर दिन जानेंगे मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ इन द शो।

हम सभी की जिंदगी ऑल इज वेल है, लेकिन थोड़े बहुत स्ट्रेस आते हैं, तो दूर करने के लिए बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। ऑल इज वेल मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन MGM 90.8 FM। एंड मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल में बात करने वाले हम डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम के साथ, जो कि HOD है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम,

0: बिहेवियरल सिम्टम्स, जैसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, काम में मन नहीं लगना या ज्यादा नींद आना। जैसे कुछ लोग ऑफिस में आते ही उनको लगता है अरे बहुत नींद आ रही है। अब देखिए इसके भी दो कारण है कि सच में उनकी नींद नहीं हुई है क्योंकि शायद वो घर पे भी ऑफिस का काम लेके बैठे हों, और फिर दूसरा है कि ये स्ट्रेस का अर्ली साइन भी माना जा सकता है। और तीसरा है देखिए कॉग्निटिव, कि हमारा फोकस जो है वो कम होना, तो फोकस करने में दिक्कत आना और कंसंट्रेट करने में दिक्कत आना, फिर हमेशा नेगेटिव सोचना, हमेशा दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलना, ये सब कॉग्निटिव चीजें हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेस की अर्ली साइंस है।
1: तो आप में से भी ऐसा किसी को लग रहा है कि यार वो स्ट्रेस में है और उसके अंदर जो साइन अभी मैम ने बताए वैसे नजर आ रहे हो, तो भाई थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिएगा और हेल्थ को वेल रखिएगा, बाकी मुस्कान की चमकान बरकरार रखिए और जिंदगी में इतना स्ट्रेस मत बढ़ाइएगा कि आपकी हेल्थ खराब हो, क्योंकि हेल्थ वेल रहेगी तो सब कुछ ऑल इज वेल रहेगा। स्टे ट्यून।

हेलो दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हो आप? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होगा। नींद की झपकी आपकी पूरी हो चुकी होगी और रेडियो तो आपने ऑन किया ही होगा। बंदे का नाम है अदनान और आपके साथ आया है फिलहाल आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। आज की फरमाइश की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे और एवरग्रीन सॉन्ग के साथ। ये गाना है फिल्म प्यार झुकता नहीं इससे, और इसकी फरमाइश की है सुगंधा व्यवहारी जी ने।

गाने को गाया है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार ने। गाने के बोल है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, आय हाय क्या गाना है यार। मुझे आज भी याद है जब बचपन में हम वो काली पीली आती थी ना उसमें गाँव जाते थे और उस काली पीली के अंदर ना वो ये गाना अक्सर प्ले करता था तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। मिथुन और पद्मिनी कोल्हापुरी जी इस फिल्म में आपको दिखाई देंगे और ये गाना सीधा दिल को छू देता है और एकदम मूड फ्रेश करता है। तो चलिए फिर सुनते हैं सुगंधा जी की फरमाइश पर ये बेहतरीन सा गाना तुमसे मिलकर ना जाने और खो जाते इस रोमांचक संगीत में। और बाय द वे आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

सुनिए सुनिए सुनिए, गौर फरमाइएगा, इधर देखिए, सॉरी सुनिए इधर, एक जरूरी अपडेट आपको देना है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान, और अपडेट कुछ ऐसा है कि आप मुंबई जाना चाहते हो या बैंगलोर जाना चाहते हो, बरोबर, कुछ ना कुछ आपके प्लान्स होंगे, कुछ काम के सिलसिले में या वेकेशन के लिए आप जाना चाहते होगे बाय एयर। तो फिलहाल अपने छत्रपति संभाजीनगर टू मुंबई एंड बैंगलोर के फ्लाइट थोड़े कम कर दिए गए हैं। मुंबई के लिए अपने शहर से हर दिन फ्लाइट अवेलेबल थी, लेकिन अब बस 4 दिन ही मुंबई के लिए फ्लाइट अवेलेबल रहेगी। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार, इन चार दिन ही फ्लाइट अवेलेबल रहेंगी मुंबई के लिए। और बेंगलुरु के लिए ना तो बस 3 दिन फ्लाइट अवेलेबल रहेंगी, पहले 4 दिन थी वीक में, अब बस 3 दिन ही फ्लाइट अवेलेबल है छत्रपति संभाजीनगर टू बैंगलोर। सोमवार, मंगलवार और गुरुवार, इन 3 दिन ही आपको बस बैंगलोर जाते आएगा अपने शहर से बाय एयर। और ये दोनों भी फ्लाइट इंडिगो के थे, और इंडिगो ने फिलहाल फ्लाइट कटिंग की है, यानी कि थोड़े फ्लाइट कम कर दिए गए हैं। पूरे इंडिया में ये सब कुछ चल रहा है, बिकॉज जो फ्यूल लगता है ना एरोप्लेन के लिए, उसके रेट बढ़ रहे हैं, इसी वजह से ये कटौती कर दी गई है, ऐसा ऑफिशियल की तरफ से आया है। अब इतने सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान अपने शहर को हो सकता है, बिकॉज पर्यटनाची राजधानी म्हणजे छत्रपति संभाजीनगर, आणि आपल्याकडे देश विदेशातून अनेक पर्यटक येत असतात, पण आता कनेक्टिव्हिटी थोडी कमी झाली, यामुळे पर्यटकांची संख्या सुद्धा थोडी कमी होऊ शकते, कहीं ना कहीं इसका असर सीधे अपने टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी हो सकता है। और हाँ, एक बताने का दो रह गया कि 16 जून से 30 सितंबर के बीच में जो गोवा की फ्लाइट थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है अपने शहर से, तो अब नुकसान तो हो ही सकता है अपने शहर में जब फ्लाइट्स बंद होती है। आई होप कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए और फिर से सभी फ्लाइट्स शुरू हो जाए। स्टे ट्यून्ड, ऑल इज वेल, आरजे अदनान के साथ, ये जो चिलमन है।

0: 17th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन MGM यूनिवर्सिटी में होने जा रही है। आइए इस बारे में जानते हैं ऑनरेबल वाइस चांसलर MGM यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर विलास सपकार जी से।
1: द 17th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट MGM यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग 12th एंड 13th जून 2026। दिस कॉन्फ्रेंस इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड विद ब्रिजवाटर स्टेट यूनिवर्सिटी USA, हसन टू यूनिवर्सिटी मोरक्को, सिद्दी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी मोरक्को एंड टाफिला टेक्निकल यूनिवर्सिटी टाफिला जॉर्डन। एक्सपर्ट्स अक्रॉस द ग्लोब विल बी डेलिब्रेटिंग ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च इनोवेशन एंड पेडागॉजी एज वेल एट स्टार्टअप एंड इनोवेशंस फॉर यू। आई अपील ऑल स्टूडेंट फैकल्टी रिसर्चर स्कॉलर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस एंड टेक देयर नॉलेज टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सलेंस।
0: 17th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन 2026 12th जून एंड 13th जून एट MGM यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजीनगर।

0: गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से आरजे अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 FM। मलिका एक गजल यानी बेगम अख्तर साहिबा।
1: कमरिया टरिया पे आओ सवरिया देखा दे।
0: 1948 का इंडिया पाकिस्तान का युद्ध। युद्ध के बाद दोनों देशों के सहमति से अटारी वाघा बॉर्डर पर एक इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन करवाया गया। सरहद के एक तरफ भारत की जनता थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता, और बीच में दोनों की आंखों का सितारा बेगम अख्तर साहिबा। वही अटारी बॉर्डर पर बेगम अख्तर साहिबा ने अपनी सबसे फेवरेट ठुमरी हमारी अटरिया में दो नई लाइनें जोड़ दी।

थे और सबकी आंखों में आंसू थे। ये था मलिकाए गजल बेगम अख्तर साहिबा का जादू। गानों की किस्से तेरे मेरे हिस्से। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM विद

क्या। इतना बढ़िया गाना है ना ये, तुम ना हुए मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा रहा। मतलब एकदम माहौल को चेंज ही कर दिया इसने। वक्त हो चुका है एग्जैक्टली अभी 10:53 का, यानी कि मेरा अभी वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का, टाटा बाय बाय करने का। आई होप कि मेरा शो आपको पसंद आया होगा। तो शो कैसा लगा है ज़रूर मुझे बताइएगा, DM कीजिएगा और इंस्टा पर RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर। बाकी तो भाई अपना ख्याल रखिएगा और ज़रा गाड़ी आराम से चलाइएगा, मुझे आपकी फिक्र है इसी वजह से कह रहा हूँ। बाकी तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट का सफ़र यूँ ही जारी रहेगा, बरकरार रहेगा। मिलते हैं कल सुबह ठीक 7 बजे। टेक केयर, टाटा बाय बाय। और ये अगला गाना आपके कानों पर आ रहा है, तुम साथ हो। 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: हर दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़. इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में. सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा.
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है.
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गया होगा, हर दिन थोड़ा भाग दौड़ वाला रहा हो। तो अब समय है खुद को थोड़ा रिलैक्स करने का। ऑफिस, पढ़ाई, घर के काम, फिर ट्रैफिक की टेंशन, जो भी आज हुआ उसे कुछ देर के लिए साइड में रख दीजिए और हमारे साथ इस खूबसूरत शाम का मजा लीजिए। शाम का समय हमेशा खास होता है। दिन भर की मेहनत के बाद जब सूरज धीरे धीरे ढलता है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमें थोड़ा रुक कर मुस्कुराने का मौका दे रही है। तो एक कप चाय हो जाए या दोस्तों और परिवार के साथ कुछ प्यारी बातें, इस पल को अपने तरीके से एंजॉय कीजिए। और हाँ, अगर आज किसी ने आपकी मदद की हो, आपको हंसाया हो या आपका दिन बेहतर बनाया हो तो उन्हें एक छोटा सा थैंक यू कहना मत भूलिए। छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को और खूबसूरत बनाती है। आने वाले कुछ मिनटों में हम आपके लिए लेकर आए हैं शानदार गाने, अच्छी बातें और ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जी। कहीं मत जाइए क्योंकि आपकी ये शाम और भी खुशनुमा करने वाले हम। सो हैप्पी इवनिंग एंड एंजॉय योर इवनिंग विद अस ऑन योर एमजी 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, बॉलीवुड का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और सच कहे तो ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि जिंदगी का एक ऐसा खूबसूरत और बड़ा सबक है जो मैंने तो सीख लिया है भाई। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, कभी एग्ज़ाम में उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं आते, कभी नौकरी में परेशानी होती है, तो कभी किसी के सपनों को पूरा करने में समय लग जाता है। उस समय हार मान लेना आसान होता है, लेकिन वहीं से असली खेल शुरू होता है। जो लोग गिरने के बाद फिर से खड़े होते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं, वही आगे जाकर सफलता की नई कहानी लिखते हैं। क्योंकि हार सिर्फ एक नतीजा है, आखिरी मंजिल नहीं। याद रखिए, हर सफल इंसान की कहानी संघर्ष का एक अध्याय जरूर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने मुश्किलों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। तो अगर आज आपको लगता है कि चीजें आपके मुताबिक नहीं चल रही, तो निराश मत होइए, खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है आपकी अगली कोशिश ही आपको उस मंजिल तक पहुँचा दे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार हो। पॉजिटिव रहिए एंड सुनते रहिए एमजे मनाड़ी पॉजिटिव फिल्म। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। शाम का समय आते आते अक्सर हमारी एनर्जी थोड़ी कम होने लगती है। पूरे दिन के काम, पढ़ाई, भागदौड़ के बाद कुछ अच्छा खाने का मन करता है, बिल्कुल स्वाभाविक है ये तो। और सच कहे तो शाम के स्नैक्स सिर्फ पेट नहीं भरते बल्कि मूड भी बेहतर बना देते हैं। जरा सोचिए, एक गर्मा गर्म एक कप चाय, साथ में थोड़ा सा पोहा, उपमा, सैंडविच या भुना हुआ मखाना, बस दिन भर की थकान जैसे धीरे धीरे दूर होने लगती है। कई बार एक छोटा सा हेल्दी स्नैक हमें फिर से तरोताजा महसूस करा देता है। लेकिन दोस्तों, शाम के नाश्ते में कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा तला भुना या भारी खाना मत खाइए, कुछ हल्का और पौष्टिक खाइए ताकि शरीर को एनर्जी मिले और रात का खाना भी आराम से खाया जा सके। साथ में थोड़ा पानी पीना और कुछ मिनट खुली हवा में टहलना भी आपकी मूड को बेहतर बना सकता है। तो अगर आप अभी काम से लौटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या बस आराम कर रहे हैं, तो अपने लिए कुछ स्वादिष्ट और हेल्दी शाम का नाश्ता ज़रूर बनाइए। कभी कभी खुद को दिया गया एक छोटा सा ब्रेक पूरे दिन का सबसे अच्छा पल बन जाता है। तो चलिए स्नैक्स का मजा लीजिए, ऑफ कोर्स सुनते रहिए MG 90.8 FM, साथ है तो बात है। ये

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब मन करता है कि सारी टेंशन, सारी भाग दौड़ और सारी परेशानियों से थोड़ा दूर निकल जाए, बस कुछ देर के लिए खुद को खुला छोड़ दे और जिंदगी को उसके अपने अंदाज में महसूस करे। हवा का एक खूबसूरत सा स्वभाव होता है, वो कभी एक जगह नहीं रुकती, हमेशा आगे बढ़ती रहती है और हमें भी यही सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, रुकना नहीं है, नए रास्ते, नए सपने और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते रहना है। कई बार हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सफर ऐसे भी होते है जहां हमें बस खुद पर भरोसा रखना होता है और जिंदगी को अपना रास्ता चुनने देना होता है, क्योंकि कई खूबसूरत मंजिलें हमें तब तक मिलती है जब तक हम उनकी ज्यादा प्लानिंग नहीं करते। तो इस शाम कुछ पल अपने लिए निकालिए, खिड़की से आती ठंडी हवा को महसूस कीजिए, अपने मन को थोड़ा हल्का कीजिए और उन सपनों के बारे में सोचिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हो। अब वक्त है ऐसे खूबसूरत गाने का जो आपके दिलों में उम्मीद जगा देगा और आपका सफर और भी खूबसूरत बना देगा। Only on MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: Your dream is to become an engineer, an architect or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University JNEC is the best option for you. Course is accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-44-74-266 or visit mgmu.ac.in.
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 15 नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी to visit mgmu.ac.in.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। जब बात सेहत और प्राकृतिक चीजों की होती है तो शहद का नाम जरूर आता है। स्वाद में मीठा और गुणों से भरपूर शहद सदियों से लोगों की पसंद रहा है। सुबह गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीना हो या फिर चाय में चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करना हो, कई लोग इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। शहद में प्राकृतिक मिठास होती है जो इसे खास बनाती है। मौसम बदलने पर गले में खराश हो या हल्की खांसी महसूस हो तब भी बहुत से लोग शहद का सेवन करना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये खाने का स्वाद बढ़ाने का भी एक आसान सा तरीका है। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी चीज की तरह शहद का सेवन भी संतुलित मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में किसी भी मीठी चीज का सेवन सही नहीं माना जाता, इसलिए स्वाद और सेहत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो अगर आप अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी हेल्दी आदतें जोड़ना चाहते हैं तो शहद भी उनमें से एक हो सकता है। इसकी मिठास सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि आपके दिन को भी थोड़ा बेहतर बना सकती है। तो ऑफ कोर्स ये बातें याद रखिए और सुनते रहिए एमजीएम रानी पॉइंटेड फिल्म। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल की बात हो और चिया सीड्स का नाम ना आए ऐसा कम ही होता है। छोटे छोटे ये बीज देखने में भले ही साधारण लगते हो लेकिन इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने वाले लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं। कई लोग चिया सीड्स को पानी में भिगोकर सुबह या दिन में पीना पसंद करते हैं। पानी में कुछ देर रहने के बाद ये फूल जाते हैं और एक जेल जैसी परत बना लेते हैं। यही वजह है कि इन्हें खाने या पीने की कई अलग अलग तरीके भी लोकप्रिय है। अगर आप दिन भर खुद को फ्रेश और एक्टिव महसूस करना चाहते हैं, तो हेल्दी खान पान के साथ चिया सीड्स वाला पानी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसे स्मूदी, नींबू पानी या दूसरे हेल्दी ड्रिंक्स में भी मिलाकर पिया जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक चीज खाने या पीने से सेहत नहीं बनती। अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी नींद भी उतनी ही जरूरी है। चिया सीड्स को भी अपनी रोजमर्रा की हेल्दी आदतों का एक हिस्सा बनाइए। कोई जादुई उपाय नहीं। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो फिर हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी आदतों को अपनाइए एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए MJ Manali Pondy Films। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। सेहतमंद रहने के लिए हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी अच्छी आदतें भी बड़ा फर्क ला सकती है। ऐसे ही एक आसान आदत है पानी में नींबू मिलाकर पीना। नींबू पानी एक ऐसी ड्रिंक है जो ताजगी का एहसास देती है। सुबह हो, दिन हो या कोई भी समय हो, एक ग्लास नींबू पानी कई लोगों की पसंद होता है। इसका हल्का खट्टा स्वाद न सिर्फ मूड को फ्रेश कर देता है बल्कि गर्म मौसम में भी अच्छा महसूस कराता है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत नींबू पानी से करते हैं, वही कुछ लोग इसे बाहर से घर लौटने के बाद या शाम की थकान दूर करने के लिए पीना पसंद करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये लगभग हर घर में उपलब्ध होता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि अच्छी सेहत सिर्फ एक ड्रिंक से नहीं बनती, इसके लिए संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, भरपूर पानी और अच्छी नींद भी उतनी ही जरूरी है। नींबू पानी इन अच्छी आदतों का एक छोटा सा लेकिन अच्छा हिस्सा बन सकता है। तो अगर आप भी अपनी दिनचर्या में कुछ आसान और हेल्दी बदलाव लाना चाहते हैं तो एक ग्लास ताजगी भरा नींबू पानी आजमा सकते हैं। इन्हीं छोटी छोटी आदतों को डेवलप कीजिए अपनी लाइफ में और सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: देखते हमारी आज की हैप्पी इवनिंग अपनी आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। दिस इज आरजे मनीषा, यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। उम्मीद है आपने हमारे साथ बिताए ये पल पसंद किए होंगे और आज की शाम आपके लिए थोड़ी और खुशनुमा बनी होगी। जिंदगी में हर दिन नई चुनौतियां आती है, लेकिन हर दिन एक नए मौके भी लेकर आता है। इसलिए चाहे दिन कैसा भी गुजर रहा हो, इस रात को एक मुस्कान के साथ खत्म कीजिए और कल की नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार कीजिए। याद रखिए, खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी वजहों की जरूरत नहीं होती। परिवार के साथ कुछ पल, दोस्तों के साथ छोटी छोटी बातें, पसंदीदा गाना या एक प्यारी सी मुस्कान भी दिन को खास बना सकती है। आज के शो में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार, आपका साथ और आपके मैसेजेस ही हमें हर दिन आपके और करीब ले आते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आप अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जिंदगी के हर पल को एंजॉय कीजिए। ऑफ कोर्स फिर मुलाकात होगी एक नई शाम, नई बातों और शानदार गानों के साथ। Only on MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Course is accredited by AICTE and COA. BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी to visit mgmu.ac.in.

सुनिए सुनिए सुनिए, गौर फरमाइएगा, इधर देखिए, सॉरी सुनिए इधर, एक जरूरी अपडेट आपको देना है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान, और अपडेट कुछ ऐसा है कि आप मुंबई जाना चाहते हो या बैंगलोर जाना चाहते हो, बरोबर, कुछ ना कुछ आपके प्लान्स होंगे, कुछ काम के सिलसिले में या वेकेशन के लिए आप जाना चाहते होगे बाय एयर। तो फिलहाल अपने छत्रपति संभाजीनगर टू मुंबई एंड बैंगलोर के फ्लाइट थोड़े कम कर दिए गए हैं। मुंबई के लिए अपने शहर से हर दिन फ्लाइट अवेलेबल थी, लेकिन अब बस 4 दिन ही मुंबई के लिए फ्लाइट अवेलेबल रहेगी। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार, इन चार दिन ही फ्लाइट अवेलेबल रहेंगी मुंबई के लिए। और बेंगलुरु के लिए ना तो बस 3 दिन फ्लाइट अवेलेबल रहेंगी, पहले 4 दिन थी वीक में, अब बस 3 दिन ही फ्लाइट अवेलेबल है छत्रपति संभाजीनगर टू बैंगलोर। सोमवार, मंगलवार और गुरुवार, इन 3 दिन ही आपको बस बैंगलोर जाते आएगा अपने शहर से बाय एयर। और ये दोनों भी फ्लाइट इंडिगो के थे, और इंडिगो ने फिलहाल फ्लाइट कटिंग की है, यानी कि थोड़े फ्लाइट कम कर दिए गए हैं। पूरे इंडिया में ये सब कुछ चल रहा है, बिकॉज जो फ्यूल लगता है ना एरोप्लेन के लिए, उसके रेट बढ़ रहे हैं, इसी वजह से ये कटौती कर दी गई है, ऐसा ऑफिशियल की तरफ से आया है। अब इतने सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान अपने शहर को हो सकता है, बिकॉज पर्यटनाची राजधानी म्हणजे छत्रपति संभाजीनगर, आणि आपल्याकडे देश विदेशातून अनेक पर्यटक येत असतात, पण आता कनेक्टिव्हिटी थोडी कमी झाली, यामुळे पर्यटकांची संख्या सुद्धा थोडी कमी होऊ शकते। कहीं ना कहीं इसका असर सीधे अपने टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी हो सकता है। और हाँ, एक बताने का दो रह ही गया कि 16 जून से 30 सितंबर के बीच में जो गोवा की फ्लाइट थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है अपने शहर से, तो अब नुकसान तो हो ही सकता है अपने शहर में जब फ्लाइट्स बंद होती है। आई होप कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए और फिर से सभी फ्लाइट्स शुरू हो जाए। स्टे ट्यून्ड।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।
1: पहली सैलरी कितनी थी शायद कुछ साल के बाद याद भी ना रहे, लेकिन उस सैलरी का एहसास जो जिंदगी भर याद रहता है। एक लड़का था, नौकरी शुरू हुए बस एक महीना हुआ था। पूरे महीने उसने टाइम पर ऑफिस जाना, बॉस की डांट सुनना, बस की भीड़ झेलना, सब कुछ किया। फिर एक दिन मोबाइल पर मैसेज आया, सैलरी क्रेडिटेड। उसने तुरंत अकाउंट चेक किया। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसके पास आ गई हो। उस दिन ऑफिस से निकलते वक्त उसके कदम हल्के थे, चेहरे पर मुस्कान थी। दोस्तों ने कहा, चल पार्टी दे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सीधे मार्केट गया, बहुत देर तक एक दुकान के बाहर खड़ा रहा, फिर अंदर जाकर एक साड़ी खरीदी माँ के लिए और पापा के लिए एक शर्ट। घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, आज इतना खुश क्यों है, क्या हुआ बेटा? उसने मुस्कुराकर बैग आगे कर दिया। माँ ने साड़ी देखी और कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाई। पापा ने शर्ट हाथ में ली और बस इतना कहा, पैसे क्यों खर्च कर दिए बेटे? लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी ये बता रही थी कि उन्हें कितना अच्छा लगा है। उस रात पहली बार उस लड़के को समझ आया, पहली सैलरी की खुशी अपने लिए कुछ खरीदने में नहीं होती। खुशी तो तब होती है जब जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे जरूरतों पर खर्च कर दी, हम उनकी खुशियों पर ही अपना पहला खर्च करते हैं। और शायद इसीलिए पहली सैलरी की रकम नहीं याद रहती, लेकिन उसका पहला खर्च हमेशा दिल में दर्ज हो जाता है।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।